एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक सम्वत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज के प्रातःकालीन

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी

0: पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आज सुनते हैं प्रतिमा वर्मा से खेती की बातें।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैविक कीटनाशक की। कृषि में कीट और रोग हमेशा ही किसानों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। दुनिया भर में कीट व रोग नियंत्रण के रासायनिक तरीके बुरी तरह नाकामयाब साबित हो चुके हैं। महंगे कीटनाशकों का खर्च उठाना किसानों के बस की बात नहीं रही। आज ये साबित हो चुका है कि रसायनों का प्रयोग खेती में जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण हेतु बहुत नुकसानदायक है। कीटों व रोगों के नियंत्रण का एकमात्र स्थायी समाधान है कि किसान भिन्न भिन्न फसल चक्रों को अपनाए ताकि प्रकृति पर आधारित कीट और फसलों को आपसी प्राकृतिक सामंजस्य बना रहे और प्रकृति का संतुलन ना गड़बड़ाए। खेती में लगातार रसायनों के प्रयोगों से जमीन जहरीली हो चुकी है। पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले और महंगे रासायनिक कीटनाशकों और रोग नियंत्रकों के लिए किसान कर्जे के बोझ में दब रहे हैं। इससे

0: बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वे खेती में जैविक विकल्पों को अपनाएं। जैविक कीटनाशक रोग और कीट को कम से कम या खत्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता ही बढ़ाते हैं। यह हमारे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने हाथों से तैयार होते हैं। इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। किसानों के द्वारा प्रयोग किया कुछ सरल और जांचे परखे तरीकों का प्रयोग कर खेती में रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, कीट और रोग नियंत्रण और प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता वाले देसी बीजों और कंपोस्ट खादों का प्रयोग करें। भूमि में जैविक तत्वों को बढ़ाकर केंचुए और सूक्ष्म जीवों के अनुकूल वातावरण बनाएं। कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों की रक्षा करें और प्रकृति में विविधता बनाए रखें। भूमि के एक हिस्से में ऐसी फसल उगाएं जो कीट भक्षक प्राणियों को आकर्षित करती हैं या फिर दूर भगाती हैं। इसके अतिरिक्त अपने खेतों का नियमित भ्रमण कर फसल का अवलोकन करते रहें ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। अनेक प्रकार के रोगों और कीटों से नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एकड़ जमीन में छिड़काव के लिए 10-12 किलो पत्तियों का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू वगैरह के नियंत्रण के लिए बहुत लाभकारी होता है। किसान भाइयों, नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूटें। कुटी हुई गिरी को एक पतले कपड़े में बांधकर रात भर 20 लीटर पानी भिगो दें। अगले दिन इस पोटली को मसल मसल कर निचोड़ दें और इस पानी को छान लें। इस पानी में 20 ग्राम देसी साबुन या 20 ग्राम रीठे का घोल मिला दें। यह घोल दूध के समान सफेद होना चाहिए। इस घोल को कीट और फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिलाएं। एक एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का प्रयोग बनाने के तुरंत बाद करें। ऐसा नहीं करने पर तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है जिससे यह घोल प्रभावी नहीं होता। नीम के तेल की छिड़काव से गन्ने की फसल में तना बंधक व सीरस बंधक बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, करंज फलीदार पेड़ है जो मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसके बीजों से तेल मिलता है जो कि रोशनी के लिए जलाने के काम भी आता है। इसकी खल को खाद और पत्तियों को हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। करंज के तेल पत्तियों, गिरी और खल का घोल बनाने के लिए मात्रा और छिड़काव की विधि भी नीम के जैसी ही है। गोमूत्र कीटनाशक के साथ साथ पोटाश और नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत भी है। इसका ज्यादातर प्रयोग फल, सब्जी और बेल वाली फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। गोमूत्र को 5 से 10 गुना पानी के साथ मिलाकर छिड़कने से माहू, सैनिक कीट और शत्रु कीट मर जाते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें जैविक कीटनाशक की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
2: टू 107

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुना।

सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

कोई आपकी ईमानदारी, सच्चाई, बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं जान सकता जब तक आप अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत ना करें। प्रत्येक परिवार तथा उसके सदस्य एक समाज के अंग हैं। इस समाज से संबंधित कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। सत्य बोलना, चोरी न करना, दूसरों का भला करना और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, स्त्रियों का सम्मान करना, कुछ ऐसे ही गुण हैं जो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार का अर्थ यह है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना अपना गौरव बनाए रखे। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और आचरण। सदाचार शब्द में सत्य आचरण की ओर संकेत किया गया है, ऐसा आचरण जिसमें सब सत्य हो और बिल्कुल भी असत्य ना हो। जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उसे संसार में सम्मान मिलता है। सदाचार की चमक के आगे संसार की समस्त दौलत की चमक भी फीकी पड़ जाती है। सदाचार एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ईसा मसीह, गुरु नानक, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्या सागर तथा महात्मा गांधी के पास

कोई दौलत नहीं थी, फिर भी वे बादशाह थे। उनके पास सदा 4 रुपए अनमोल हीरा था। जब वे जीवित थे तो उन्हें पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त था। सदाचार और सद्व्यवहार के कारण ही वे संसार में हमेशा के लिए अमर हो गए। जहाँ सदाचार मनुष्य को सम्मान दिलाता है, वहीं दुराचार मनुष्य को घृणा दिलाता है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में राम की पूजा होती है। राम जैसे सदाचारी का उदाहरण संसार में नहीं मिलता। सदाचारी बनना आसान नहीं है। सदाचारी बनने के लिए घोर प्रयत्न करने पड़ते हैं। सदाचार के बीज बचपन में ही डाले जाते हैं, इसीलिए भारतीय जीवन शैली में ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था थी। 8 से 25 वर्ष की आयु तक बालक गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता था और सदाचार के गुणों पर चलने का अभ्यास करता था। वह विद्वान लोगों की संगति में रहता और बुरे वातावरण से दूर रहता था, क्योंकि अच्छे चरित्र के निर्माण में वातावरण और संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगति अगर एक वृक्ष है तो सदाचार उस वृक्ष का फल है। इसलिए बुरी संगति की अपेक्षा अकेले रहना अच्छा है। एक तरफ सत्संगति तो दूसरी तरफ अभ्यास तथा प्रभु की सहायता से धैर्य, संतोष, अहिंसा, संयम, क्षमा, मन और वचन से एकता, विद्या, विनम्रता और क्रोध न करना आदि सदाचार के गुण उत्पन्न होते हैं। परिवार, समाज तथा देश की उन्नति के लिए प्रत्येक मनुष्य में सदाचार के गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन सदाचार का महत्व। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में आराधना।

अभी आप सुन रहे थे आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम हरिओम शरण की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह रांची से।

0: मित्रों, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारा किडनी सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो आप यकीन मानिए आप स्वस्थ हैं। और वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल किडनी की बीमारी हर जगह दिखलाई पड़ रही है, यहाँ तक कि हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। तो आज का हमारा विषय है स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। क्या कारण है कि किडनी की बीमारी अधिक बढ़ रही है, लक्षण क्या है और खान पान में किन किन चीज़ों का सेवन करें और कौन कौन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं ताकि हमारी किडनी स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये किस प्रकार कार्य करता है?
1: हमारे शरीर में मुख्यतः दो किडनियाँ होती हैं जो बीन के आकार की होती हैं। हमारी किडनी के मुख्य कार्य में आता है खून की सफाई करना, जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर में गंदगी जनरेट होती है उसकी सफाई करना। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में एक्सेसिव जो पानी होता है उसको बाहर निकालना। और तीसरा कार्य होता है हमारे शरीर में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना। चौथा काम होता है हमारी किडनी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसमें मुख्यतः एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को मेंटेन करने में मदद करता है।
0: आज

0: आजकल की वर्तमान जीवन शैली पे हम थोड़ी सी बातचीत करें। हमारा खान पान बिगड़ गया है और हमारे काम करने के तरीके में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लगातार हम बैठ कर कार्य करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में किडनी की जो बीमारियां हैं उसके संकेत क्या हैं और क्यों ये बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं और हमारे युवा वर्ग भी इससे ग्रसित होते जा रहे हैं?
1: एक्चुअली आज के समय में जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे खान पान से संबंधित और लाइफस्टाइल में हमारे जो चेंजेज आए हैं, वो सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उससे रिलेटेड ही किडनी की बीमारी भी बढ़ रही है। जैसे अभी किडनी की बीमारी की वर्ल्ड वाइड या इंडिया में कहें सबसे मुख्य कारण है मधुमेह, डायबिटीज। तो डायबिटीज़ अगर बढ़ता है तो साथ में वो किडनी की बीमारी को भी बढ़ाता है। हाइपरटेंशन है, साथ में मोटापा है, तो ये सब खान पान से रिलेटेड बीमारियां ही हैं। और किडनी की बीमारी और अंगों की बीमारियों से भी जुड़ी होती हैं। जैसे अगर हमें हार्ट का दिक्कत होता है, लीवर का दिक्कत होता है, तो उससे भी किडनी पे प्रभाव पड़ता है। बाकी बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं, उसी से रिलेटेड किडनी की बीमारी भी बढ़ रही है।
0: हमारे युवा साथी इस बीमारी से क्यों ग्रसित होते जा रहे हैं? पहले ये बीमारियां एक खास उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन युवा साथी भी इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं।
1: इसका दो कारण है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग जल्दी इस बीमारी को पता लगा पा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है फैसिलिटी बढ़ने की वजह से, तो ये बीमारी अर्ली भी पता चल रही है। शायद ये बीमारी पहले युवाओं में या मुख्य तौर पर पता नहीं चलती थी ज़्यादा केस में, तो अभी अर्ली पता चल जाता है। और दूसरा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है। अभी काफ़ी कम उम्र में भी लोगों को हार्ट की बीमारी और डायबिटीज होने का संभावना बढ़ रहा है, उससे किडनी की दिक्कत भी सामने आ रही है।
0: पहचान क्या है किडनी की बीमारी का, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, ताकि हम सावधान हो जाए और इसका उपचार हम शुरू कर दें?
1: एक बहुत बड़ा इशू है, या उसको कह सकते हैं अभी लैकिंग है हमारे फील्ड में, कि किडनी की बीमारी बहुत देर से पता चलती है। एक्चुअली इसमें कोई सिम्टम्स जो होते हैं किडनी की बीमारी में, लक्षण जो होते हैं, बहुत देर से आते हैं। फिर भी जो लक्षण आते हैं उसमें सामान्य लक्षण है भूख का कम लगना, सुबह सुबह आप जब ब्रश करते हैं तो जी मिचली होना या उल्टी का होना, थकावट और कमजोरी लगना, पैरों में सूजन का आना या आँखों के चारों तरफ सूजन का आना, पेशाब में जलन का होना या पेशाब संबंधी कोई भी समस्या किडनी की दिक्कत को बढ़ा सकती है। अगर किसी के किडनी में पथरी की शिकायत या पेशाब की नली में पथरी रहती है तो उससे दर्द हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं हमारे बैक साइड में पीछे में दर्द होता है। एक और लक्षण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अगर किसी को मुख्यतः ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारी 50 साल के बाद होती है, 40 साल के बाद होती है, लेकिन अगर किसी को काफ़ी यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है और ब्लड प्रेशर 2-3 दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मोस्टली वो उसको किडनी की बीमारी हो सकती है। किडनी की बीमारी को पता लगाने के लिए जाँच काफ़ी सिंपल टेस्ट है जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जांचें आती हैं और एक रूटीन यूरिन की जांच होती है। ये पहला टेस्ट है हमारा। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आता है तो हम एक लोग किडनी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो काफ़ी सिंपल टेस्ट है और कहीं भी आपका हो सकता है, किसी भी जगह पे। क्रिएटिनिन एक मेज़र करने का तरीका है किडनी के बीमारी का। वो एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में जमा होता है। वैसे हज़ारों वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा होते हैं, बट क्रिएटिनिन एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारे किडनी के फंक्शन को मेज़र करने का। अगर ये बढ़ता है तो हम लोग मानते हैं कि किडनी की परेशानी है लोगों को। इसका नॉर्मल लेवल 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है जी। अगर इससे ज़्यादा है, कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है तो इसका मतलब किडनी की बीमारी किसी न किसी वजह से है
0: जी। अब डॉक्टर साहब, हम बात करें उपचार की। जांच के उपरांत ये मालूम पड़ता है कि हमें किडनी की बीमारी है, हम समस्या से ग्रसित हैं, तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है? क्या इसकी दवाइयां लगातार लेनी पड़ती है या फिर इसके आरंभिक लक्षण देखने के बाद कुछ समय तक दवाइयां लेनी पड़ती है और हम ठीक हो जाते हैं?
1: जी, ये डिपेंड करता है कि आप हमारे पास किस स्टेज में आते हैं, किडनी बीमारी के किस स्टेज में आते हैं। और इस बार हमारा वर्ल्ड किडनी डे मार्च में जो मना रहे हैं हम लोग, उसका बेसिक उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो भी किडनी के उपचार है वो सामान्य जनता तक पहुंचा सकें, सभी लोगों तक पहुंचा सकें। और दवाइयाँ हम

0: लोग ऑप्टिमाइज कर सकें सभी लोगों तक, जो सबको एक साथ मिल सके। तो इसमें अगर अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज एक्यूट किडनी डिजीज होता है और क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। एक्यूट किडनी डिजीज के इनफाइनाइट कॉज, तब बहुत सारे कारण हैं, तो उसको अगर उस कारण को ठीक किया जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से सही हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर कोई भी आपका किडनी का फंक्शन का टेस्ट 3 महीने के ऊपर अगर गड़बड़ाता है, 3 महीने से लगातार वो बीमारी चल रही है, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो फिर उसको हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जल्दी कोई मरीज आ जाता है तो उसको हम लोग किडनी के फंक्शन को डिक्लाइन को हम लोग डिले कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। अभी रिसेंट हाल फिलहाल के सालों में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई हैं जिससे हम लोग किडनी के डिजीज के बढ़ने को रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किडनी हमारी स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, और किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें दूरियां बनानी चाहिए?
0: खान पान की बात करें तो जो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है सबके लिए एक ही एडवाइस है, हमें अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। नमक हमें रिकमेंडेड नमक है कि सोडियम को 2300 मिलीग्राम पर डे लेना है, मतलब एक छोटा चम्मच नमक पर डे लेना है। तो सॉल्ट को कम करना है हमारे खाने में, वसा को कम करना है, फाइबर को बढ़ाना है, और जो हमारा कैलोरी है उसको कम करना है। व्यायाम सभी बीमारियों के लिए ज़रूरी है, जो रिकमेंडेड हमारा है कि 40 मिनट पर डे का एक ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें हमें पसीना आ जाए, मेहनत करना पड़े, और वो वीक में कम से कम 5 दिन होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वाले सभी साथियों को आप क्या कहेंगे कि आप अपनी सेहत का?
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। भेंट वार्ता करते डॉक्टर विजय कुमार सिंह रांची से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहाँ सब सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
0: उसको रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए, जैसे कि 3 महीने पे, 6 महीने पे, इस तरह से। जो भी 40 साल के ऊपर कोई पर्सन है तो उनको भी किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनका नॉर्मल है तो कम से कम साल में एक बार कराना चाहिए। पानी पीने पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी का मात्रा जो है शरीर निर्धारित करता है, बट हमारा यूरिन जो है कम से कम ऐसा पानी पीना है कि एक दिन में यूरिन की मात्रा 1.5 से 2 लीटर पास हो। खान पान में स्पेशली जो पैक्ड फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए।
1: अपने खान पान का हम ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को हम यदि व्यवस्थित रखते हैं और बुरी आदतों से यदि हम अपनी दूरियाँ बनाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम स्पीडबोट इत्येतस्याम दुर्घटनायाम दिवंगतानाम 15 भारतीय पर्यटकानाम पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्याम दुर्घटनायाम 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायाम जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां 9 मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। 6 जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम आहत्य 15 मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणां अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत अमेरिका व्यापार वार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोध सम्बन्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं संतुलितस्य वाणिज्यदृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां, कृषकाणां, श्रमिकाणां, उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापारसन्धेः सम्पादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रदा वार्ता अभवत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतु विभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचल प्रदेशे, छत्तीसगढ़े, झारखंडे, नागालैंडे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टिः भवितुमर्हतीति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजबेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेयम् इंग्लैंड दलम् सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारम् अपराह्ने 3:30 क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराट कोहली, रोहित शर्मा च भारतीय दलम् सुदृढं कर्तुम् पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः विरुद्धं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिल इत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे 21 दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी कि आप सुनेंगे 7:15 पर राग रंग, स्वर सरिता का समय होगा 7:45 पर। 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। गीत गुंजन आप सुनेंगे 8:45 पर। 9:00 का समय होगा जोहार पलामू का हिंदी में 9:00 आप सुनेंगे जोहार पलामू। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का दिल्ली से आप सुनेंगे 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 12:00 का समय होगा यादव की महफिल का। 1:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 पर। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती में सुरीला सफर। 2:00 का समय होगा हिंदी दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार का। हिंदी में समाचार का समय होगा 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नग में। 2:55 पर आप सुनेंगे रांची जिले से प्रादेशिक समाचार में सही सहेली। प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम 4:00। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में हेलो फरमाइश। 5:00 का समय होगा अंग्रेजी समाचार

माफ कीजिएगा प्रादेशिक समाचार का। शाम 5:02 पर आप सुनिएगा विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00। 6:02 पर खेती बाड़ी किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम 6:30 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे विज्ञापन रांची से। रांची से आप सुनेंगे 7:00 प्रादेशिक समाचार। जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे ये किरण। खुला आकाश के तहत आप सुनेंगे वार्ता 7:45 पर। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे देश गान। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राग रंग बांसुरी वादन के इस गोपाल कृष्णा से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह की आवाज़ में स्वर सरिता।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफपी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
6: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
5: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
6: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
5: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. We have more from a correspondent.
7: The fishing trawler FP Mark Ali had left the Digha Shankarpur fishing harbour in Purva Medinipur on the 2nd of July with 15 fishermen on board. Contact with the vessel was lost after the 5th of July. A joint search operation by the Indian Coast Guard, the Navy and state agencies continued for several days. The capsized trawler was finally located on Saturday afternoon off the Kakdip coast in South 24 Parganas. 9 decomposed bodies were recovered from the cabin of the vessel, while 6 fishermen are still missing. Search operations are continuing in the surrounding waters. The bodies were brought to Kakdip and later shifted to the Katapukur morgue in South 24 Parganas. Since the bodies are in the decomposed decomposed condition. DNA identification is being carried out and blood samples have been collected from the family members of all 15 fishermen. West Bengal Fisheries Minister Rajesh Mahato has assured the bereaved families that the state government will provide all possible support. The bodies will be handed over to the respective families after DNA confirmation and completion of all legal formalities. Shondi Bandash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
5: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh will inaugurate the event. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber, to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. We have a report.
4: The 4-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It will bring together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Thousands of exhibitors, over 7,000 buyers and delegates from more than 20 countries, including the United States, United Kingdom, Japan, Portugal, Spain, New Zealand, South Korea, among others, will participate in the event, highlighting strong government engagement. 8 states are partnering with the event this year, with 9 states and union territories participating as exhibitors. Bharat Tex 2026 aims to deepen international partnerships, unlock trade and investment opportunities, and strengthen India's position as a trusted partner across global textile value chains. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. United States launched strikes on Iran for the 3rd consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. U.S. Central Command CENTCOM said the strikes will continue, imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade the ability to attack innocent.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की।
1: सभी पोलिंग स्टेशन में बीएलओ बीएलए 2 का सेकंड मीटिंग, साथ में चुनाव पाठशाला भी आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में अभी वर्तमान में रोल में है उसका नाम में ये एसडीडी सूची बोला जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी, अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर पहुंच रहे बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में पूरा सहयोग दें। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर रांची स्थित रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने स्मृति क्विज प्रतियोगिता और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ

0: प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रिंस गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के वर्तमान परिदृश्य, नई तकनीकों और करियर की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रियंका करकेट्टा ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और जटिल शल्य चिकित्सा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने आगामी राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स डकैती कांड में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
1: डकैती की घटना हुई थी, उस कांड के मुख्य साजिशकर्ता शमशेर आलम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा गोली, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल, इसी के साथ करीब 370 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ, 160 ग्राम चांदी जैसा दिखने वाले पदार्थ बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
0: रांची में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
2: डोरंडा थाना अंतर्गत साकेत नगर एरिया है, वहां से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से उस ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूअसली रेड करेगी तो संदीप कुमार दांगी है, इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है। तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए हैं। वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन नंबर लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देखे जा सकते हैं। OMR चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने मॉनसून की कम बारिश में किसानों को खेती को लेकर सलाह दी है।
3: मॉनसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा, तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीजें कर सकते हैं।
0: 22वीं रांची जिला सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2026 में विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और अकादमियों के 226 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सांडा और ताउली की 35 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है शिकंजा, 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिट्री यूनिवर्सिटी, 15 दिनों में यूनिवर्सिटी सेवा आयोग सक्रिय होगा। प्रभात खबर ने लिखा है भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतेह, आज मतदान केंद्रों पर सुनाई जाएगी एएसडीडी की सूची। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड

सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल तुझको दिया का ये गाना।

0: लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेरी कसम का ये गाना गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत आर्य बर्मन का। तो इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार प्लामो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। आज हमारा सुविचार इस प्रकार से है, कहते हैं कुछ भाग्य को कोसते हैं तो कुछ भगवान को कोसते हैं। सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। जी हाँ, किसी को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही मार्ग खोजते हैं तो हमें ना तो भगवान को कोसना है ना भाग्य को। तो इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आज का मौसम का मिजाज। तो आज अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हार फुलाव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से हम सचेत रहेंगे। अभी जैसा कि मौसम चल रहा है और मौसम के अनुसार हमें फल फूल तो मिलते ही, और ऐसे ही मौसम में आ चुके हैं नाशपाती। जी हाँ, जो हमारे पाचन में सुधार, वजन घटाने और ब्लड शुगर नियंत्रण करने में बेहद फायदेमंद है। यह फल विटामिन सी, पोटेशियम और डाइटिंग फाइबर से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और दिल को स्वस्थ रखता है। अधिकतम लाभ के लिए इसे हम छिलके समेत भी खाने चाहिए। इसमें मौजूद भरपूर फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें राहत दिलाता है। नाशपाती में पानी की मात्रा अधिक और कैलोरी कम होती है, जिसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जो वजन घटाने में हमें मदद करता है। मीठी होने के बावजूद भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह एक डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक सुरक्षित फल है। इसमें मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नाशपाती में विटामिन सी होता है, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और त्वचा में निखार लाता है। तो हम इसे अपने जब तक हमारे मौसम के अनुसार ये फल हमें मिलते हैं, तब तक हमें खाना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: और इसी गीत के साथ जोहर पलामू से मैं आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: पलामू
0: अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।

0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओ, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओ, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहें?

0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
1: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक की गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
7: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
6: जंगल के साथी।
8: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
9: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लू। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता।
2: क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको।

0: क्या तुम मेरे साथ ही बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद

0: वहीं धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council UNSC for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: It is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President, Vice President and Prime Minister have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an extra of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. The event aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy, dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. In Odisha, the sacred Navajovana Darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after the fortnight-long Anusara period. United States launched strikes on Iran for third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. U.S. Central Command, CENTCOM, said the strikes will continue imposing a heavy cost of Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and commercial shipping in the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump threatened to destroy Pickaxe Mountain, a deeply buried nuclear site near Natanz, where Western intelligence suspects Iran is building an undeclared enrichment facility, a report.
3: U.S. President has announced that the United States will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. In a post on Truth Social, President Trump said the blockade would apply only to Iranian ships and vessels trading with Iran. He added the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. He assured that commercial traffic from other countries would continue to have free passage. The U.S. military said it will resume the blockade of Iranian ports from tonight. Iran has rejected the U.S. move, asserting its authority over the Strait of Hormuz. Tehran said that it will not, under any circumstances, allow the U.S. to interfere in the management of the Strait of Hormuz. Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
1: India Junior Women's Under-21 Hockey Team will take on Belgium today. And that is the end of this news bulletin.
4: Then we do laboratory tests, जैसे इनका hemoglobin कैसा है, blood sugar कैसी है, serum creatinine, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों kidney पे pressure आके creatinine बढ़ के kidney तो damage नहीं हो रही है. Urine test करते हैं जानने के लिए कि उसमें infection तो नहीं है, कभी कभी blood तो नहीं जा रहा है, ये urine test से हम पता करते हैं. एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
5: जी.
4: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है. जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
5: जी.
4: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है. PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से. बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है.
5: बिल्कुल.
4: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
5: जी.
4: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है. ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं. ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है. सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
5: जी,
4: है
5: जी.
4: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है.
5: ओके.
4: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है. सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
5: जी जी.
4: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट कल ऑपरेशन कर दीजिए. सो ये अगेन गलत बात है. खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं.
5: बिल्कुल.
4: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं. इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है
5: जी. बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी. और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं. तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है. अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए. बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
4: जरूर. इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है.
5: क्या बात है.
4: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है. सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
5: दो आंखें बारह हाथ.
4: दो आंखें बारह हाथ.
5: क्या बात है. सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है.

0: और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं,
0: जी
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो
0: बेहतर तरह
1: हमारी
0: से
1: इच्छा रहती है।
0: जी
1: बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। ये अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है,
0: जी
1: लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट। प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाइयां आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है,
0: जी
1: जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और 5-रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं,
0: जी हाँ
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की। यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है। ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है।
0: जी
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। ये नई नई चीजें आई हैं। हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
0: जी जी
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीशन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं,
0: जी जी
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी
1: इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है,
0: जी जी
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि
1: जी
0: अरे हमें
1: जी
0: 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है. लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज.
1: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी. सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी, ऑपरेशन की सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है।
1: जरूर।
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी।
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली

0: ये सू के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोग।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
1: जी
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
1: जी और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं,
1: जी हाँ
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
1: जी जी
0: सो
1: जी
0: इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ये बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
1: जी तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
1: जी
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 ईयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थाश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में, और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, यह एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इंफेक्शन की भी समस्या आने शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े
0: दैट्स
1: हुए
0: राइट,
1: हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा
0: जरूर
1: गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
1: तुम
0: रहती
1: रहती
0: हो,
1: हो, ब्लैक पेन फिल्म
0: काफी
1: का गाना।
0: यहां
1: जी
0: जी रोमांटिक गाना है,
1: जी जी
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आप आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे,
0: हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक
1: जी
0: जमाना था गाते थे। और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग
1: हाँ
0: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है,
1: जी जी
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं। सो
1: जी
0: म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे
1: बंद हो जाएगा।
0: नहीं।
1: जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत

0: मन बात हो गई है रात में, खास तौर से कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है
0: ओ
1: और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं,
0: ओ
1: जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है।
0: जी
1: सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है।
0: जी जी
1: सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
0: जी
1: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
0: जी
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया, और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
0: जी
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
0: जी
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल,
0: जी
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए।
0: जी
1: और फोर्थ इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है,
0: जी
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है, और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है।
0: जी
1: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है,
0: जी
1: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है।
0: ओ
1: और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है

0: I think yoga, exercises, all these things help them in relaxing the bladder muscles ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें. सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है.
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है.
1: जी,
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है.
1: जी,
0: दूसरी बात समय समय से यूरिन कर लेना है. तीसरी बात हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. देर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्शुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
1: जी.
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है. और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं. वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है. क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है. कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं. ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं. डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है.
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है.
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में,
0: जी
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है,
0: जी
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है,
0: जी
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है।
0: जी
1: ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है,
0: जी
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
0: जी
1: हर पेशेंट, वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
0: जी
1: दूसरी बात है, हर

0: इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है.
1: जी
0: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है.
1: जी बिल्कुल.
0: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट. सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो.
1: बिल्कुल,
0: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट. सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं.
1: जी बिल्कुल. हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं.
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है.
1: जी
0: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें. लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए.
1: जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज. कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए.
0: जरूर. लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं. कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है.
1: ओके.
0: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक्ट नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं.
1: जी.
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं.
1: Okay.
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है. ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए. इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए. सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है.
1: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग. इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तुते कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजें, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरिहरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अलीशाज लव नोट्स इस एल्बम का गाना, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चांदनी इस एल्बम का गाना वनिता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

से लो मैं चमन को चला वीरन से, क्षमा है कब से जुदा परवन से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से, दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना।

फिर पाऊंगा और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है कजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सही लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा है, हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The comprehensive economic and trade agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99%

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय

0: विद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बने उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर, मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन और रोजगार परक कोचिंग के लिए 15 दिनों के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा और सारंडा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। श्री मरांडी ने कहा कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1: जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को विवश हो, लेकिन सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में डीएमएफटी पर 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनते।
0: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार कल दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित आवासीय विद्यालय में 4 छात्राओं के सांप काटने और 1 छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की बूथ लेवल अधिकारी अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने क्षेत्र के सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है। चक्रधरपुर की बीएलओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि एसआईआर कार्य में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबका सहयोग मिला। वहीं अनीता देवी ने अन्य बीएलओ से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का आह्वान किया।
2: बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत मेहनत भी किया लेकिन मेहनत करने में उतना ही आनंद भी आया। पूरे जनता का भी, पूरे वोटर का भी सपोर्ट रहा, उनके सहयोग से भी हम लोग 100% का हो पाया। अभी जिनके माता पिता का हो रहा है, आगे जिनके बच्चे के लिए फायदा होगा।
0: झारखंड पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में जिला पुलिस, एटीएस और अन्य इकाइयों के 45 अधिकारी प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रशिक्षण ए विजय लक्ष्मी ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर

0: पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दुमका में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य शंकर हाजरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर तथा रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने इसकी जानकारी दी।
1: इंदिरानगर क्षेत्र मुंबई इंदिरानगर क्षेत्र में कुछ लोगों को ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया गया। इनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक है भारती केबरतो, दूसरे हैं विशाल केबरतो और एक बालक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसको नियुक्त किया गया है। दो लोग हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। इसमें टोटल 38 पुड़िया मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद किया गया।
0: सीआईएसएफ कोयला क्षेत्र करगली रांची के उप महानिरीक्षक सुमंत सिंह ने करकट्टा जंगल का दौरा कर अवैध कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने तथा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक दोपहर के कारोबारी सत्र में नुकसान के साथ काम कर रहा था। सेंसेक्स 356 अंक लुढ़ककर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर हजारीबाग में 3 दिवसीय शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खासकर हजारीबाग की लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर इन कलाकारों के उत्पाद बिक सकें।
2: टैलेंट को कमी नहीं, मार्केटिंग का उचित व्यवस्था अगर हो जाए, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना समरालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। झारक्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा।
0: और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजया लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है, संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर, और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर। कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वो सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट लाके दी, तो मैं साथ ले आई और

बहुत सुनती थी और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने

की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है, और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना, नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज है।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है। सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत में होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर पर ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ग़ारी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोग कर रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए

0: आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर चढ़ा एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान

0: पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्म पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता होगा। 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है पूजा के फूल, इस फिल्म से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं।
1: हाँ।
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और बात सेहत की हुई है हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते
1: जी।
0: हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहां हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और ये हैं कि उनका इंतजार होता है।
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा।
0: हाँ।
1: लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
1: तो
0: मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते
1: घंटों
0: थे,
1: लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना,
1: हाँ।
0: लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, भाई किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा
1: मतलब
0: लगता है।
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए,
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कॉन्टैक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
6: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
5: अच्छा?
6: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
5: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट की है, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
6: ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
5: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जे वो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
6: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट

0: और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है, हाँ अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है, जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
0: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा अभी आपने कहा, हम सब बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है,
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है, उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक, तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है, और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं।

0: ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में, और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपने अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना

0: है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती हैं खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008 2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022 23 की हम बात कर रहे हैं
1: तब जाके
0: जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
1: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
0: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
0: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारी श्रोता लिखती है कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
1: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
0: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये जो पिज़्ज़ा
1: हाँ,
0: बर्गर ये चीज़ें हम घर में,
1: मोमोज, ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया
0: और
1: है।
0: बच्चे इन चीज़ों से बड़े
1: हाँ,
0: आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ हैं उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो उपयोग कर लिए जाएं,
0: जी
1: और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और
1: बिल्कुल
0: सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
1: सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: यानी
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण इन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी,
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसकी उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे,
1: समझाइए।
0: उदाहरण दे के समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे। यानी
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है?
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और
1: और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड एंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए।
1: जी,
0: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
0: बहुत खूबसूरत, डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया, जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था,
1: जी
0: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पर।
1: अच्छा,
0: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा। नला ठीक है, मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था।
1: जी,
0: दे लाइक इट, दे शॉर्ट लिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई, एंड आई ज्वाइन द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था,
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: हाँ,
1: का,
0: उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहां पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा,
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है,
1: जी
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। वे तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा,
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार,
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते
0: आप
1: हैं इस रोल के बारे में,
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है।
1: जी,
0: तो
1: जी जी जी
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है,
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ,
1: जी।
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा,
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक, अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा बड़ी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया। मैंने बोला ये करता हूं, तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लाइक ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए, मैंने बोला सर एक पॉइंट है, बोले हाँ बोलो, मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है,
1: जी जी,
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बोला गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म,
1: यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए, आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है,
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है,
1: जी जी।
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कोई इसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ।

0: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
1: बहुत
0: होता है।
1: जरूरी है।
0: हाँ
1: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ।
0: जी
1: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
0: अच्छा
1: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी और वो जाने को बोलते हैं।
0: अच्छा
1: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर तो है कि, तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
0: हाँ
1: थोड़ा सा इमोशनल
0: अब
1: रहा
0: तक
1: है।
0: वो महात्मा बोल रहा है मगर
1: हाँ
0: अब
1: अब तक
0: जो
1: प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है
0: बिल्कुल
1: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोले अरे करना यार काइंड ऑफ। तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो
0: हाँ
1: थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है,
0: हाँ
1: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, एक तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू। कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: बिल्कुल
1: वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
0: क्या बात है।
1: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो
0: जी
1: विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
0: अच्छा
1: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
0: बड़ा
1: बहुत
0: नाम है
1: बड़ा नाम है, शोज
0: जी।
1: करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी हमने साथ में पहली फिल्म थी,
0: अच्छा अच्छा
1: उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
0: जी
1: बोले हम लोग अच्छे दोस्त थे। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
0: जी
1: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले,
0: हाँ
1: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आपको 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
0: जी
1: कि
0: जी
1: कैसे
0: जी
1: कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
0: अच्छा
1: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
0: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है तो हम उसकी बात करेंगे मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। मैं गया तो फैमिली के साथ था लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
0: आइए सुनते हैं।
1: जी सर।
0: दो लफ्ज़

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: रहती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: कई
0: है,
1: नहीं।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते।
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा, रंजीत सर के रीडिंग में 1.5 पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके।
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा, जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप, ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो
0: है।
1: ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो मैं
0: जी
1: उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है, प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं
0: है।
1: आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस।
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम दे जाती है।
0: जी जी जी जी और उसका जो भी रिएक्शन आना है

0: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है
1: हाँ
0: लाइव परफॉर्मेंस,
1: लाइव परफॉर्मेंस
0: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है,
1: जी। और उसका जो भी
0: वो
1: रिएक्शन आना है
0: चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है।
1: जी। और उसका जो भी रिएक्शन आना है।

0: दोस्त थे अमोल खंते,
1: जी
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
1: हाँ
0: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
1: हाँ
0: मैं बैठा रहता था। एक कॉपी और पिल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: लाइट कॉमेडी है उस
1: तो ये
0: टाइप
1: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर? हाँ
0: का। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना, हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
1: जी
0: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी जी
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324, ये उसका हमने टाइटल दिया था,
1: अच्छा
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी
0: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
1: हाँ
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
1: जी जी
0: है, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या
0: या
1: बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
1: जी
0: और
1: जी
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: तो चलिए
0: हालांकि
1: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
1: जी आइए सुनते हैं।

0: रूपी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
1: अच्छा,
0: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
1: जी,
0: जब
1: जी.
0: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
1: अच्छा
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
1: जी.
0: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं,
1: अच्छा.
0: उनको अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
1: अच्छा,
0: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
1: हाँ,
0: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
1: जी जी जी
0: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
1: अच्छा,
0: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
1: जी जी
0: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा,
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
1: अच्छा,
0: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी, वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा दिखाएंगे।
1: अच्छा,
0: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी जी,
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
1: अच्छा,
0: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
1: हाँ,
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
1: कई शेड्स हो सकते हैं जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
1: हाँ,
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
1: जी जी,
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी,
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
1: अच्छा,
0: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
1: जी,
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
1: जी जी,
0: दैट वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
1: जी,
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रहा ही।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे,
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: हाँ, वो फिल्म आई,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवां में

0: चले जा रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है
1: हाँ
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन,
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर
1: हाँ
0: ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी।

0: अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं? आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी जी
1: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
0: अच्छा
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई।

0: ट्री फिल्म्स ऑडियो विजुअल्स
1: जी जी
0: मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
1: अच्छा
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई।

0: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
1: वाह वाह,
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया ये गाना
1: यही
0: ही
1: गाना सुन
0: बहुत
1: लेते
0: ऐप्ट
1: हैं।
0: होगा कि
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल
0: जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जी जान से लड़ते
1: जी
0: हैं, तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं
1: दुर्भावना
0: वो
1: है,
0: भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी।
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीज़ों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ

0: रहा है
1: जी।
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए।
0: जी जी
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी जी
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी जी हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी जी
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ।
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूं।
0: जी जी
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी जी
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
0: हाँ,
1: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
0: क्या बात है
1: जी,
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है उसमें आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है,
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का,
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 females, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह,
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
0: जी,
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूं कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है, जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो,
0: जी, जी, जी,
1: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
0: क्या बात।
1: तो ये मेरा सबसे जरूरी है, अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
0: अच्छा,
1: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
0: ओह, क्या बात।
1: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैं ना भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
0: अच्छा।
1: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
0: हाँ,
1: पॉजिटिव बात है।
0: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
1: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
0: अच्छा।
1: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
0: जी, जी।
1: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूं, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। I would love to guide them. विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
0: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
1: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
0: जी,
1: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते,
0: हाँ,
1: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो,
0: हाँ
1: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
0: जी
1: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
0: हाँ
1: तो
0: ना, आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
1: बिल्कुल
0: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
1: इम्पोर्टेंस,
0: नहीं है।
1: महत्व नहीं है।
0: ओह
1: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
0: हाँ
1: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
0: हाँ
1: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
0: लगे कि मैंने काम
1: लगे कि
0: किया
1: विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरा
0: बिल्कुल
1: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
0: ओहो
1: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
0: क्या बात, क्या बात।
1: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
0: वाह
1: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
0: क्या बहुत ही खूबसूरत
1: बहुत
0: गाना है,
1: खूबसूरत गाना
0: आइए सुनते हैं।
1: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचिस को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी,
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना।

बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। अभी आपने सुना।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था, खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: उलझन सच बन गया अगर उलझन फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता मुझ पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे जिम सही इनके लिए है मोतजम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए सारे को वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ देखिए सारे को वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ
1: मंजिल तय हुई हम सफर भी बन गए पता न चला ये दो दिल कब एक हुए हमें पता न चला मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल, तो आज की रात चलना होगा।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

0: कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों,
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे फेमिक सुतीन मेगाहर्ट्स पर सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय होगा शाम 6:02 से।

में आजकल फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकेंगे शाम 7:15 से। खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर।

रात 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। रात्रि 10 आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। रात्रि 11 हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हर रोज की तरह अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवानी।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। दोस्तों, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी चर्चा का पहला विषय है विश्व युवा कौशल दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में आइए जानकारी लेते हैं कि क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेष बातें। दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी और पहली बारी से 2015 में मनाया गया था। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा ही होते हैं। यदि युवाओं के पास शिक्षा के साथ साथ सही कौशल भी हो तो वे न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज का समय केवल डिग्री लेने का ही नहीं बल्कि कौशल का भी है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों का सीखना भी आवश्यक है। दोस्तों, आज के युग में कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समय प्रबंधन, समस्या समाधान और उद्यमियता जैसे कौशल विकास महत्वपूर्ण हो गए हैं। जिन युवाओं के पास ये कौशल होते हैं उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं और वे आत्मनिर्भर बने रहते हैं। दोस्तों, युवाओं को चाहिए कि वे अपने खाली समय का सदुपयोग करें। मोबाइल और सोशल मीडिया का पर अनावश्यक समय बिताने के बजाय नई नई चीज़ें सीखें। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण लें, नई भाषाएं सीखें, कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ाएं और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। दोस्तों, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा। दोस्तों, हमारे देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को उद्योग से आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण करना है, उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। यदि युवा इन अवसरों का सही लाभ उठाएं तो वे न केवल स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी प्रगति में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आज के युवा के सामने कई नई चुनौतियां भी हैं जैसे बेरोजगारी, तकनीकी बदलाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन चुनौतियों का सामना केवल कौशल, मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच से ही किया जा सकता है। हमें हमेशा सीखते रहने की आदत विकसित करनी

चाहिए क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, इस विश्व युवा कौशल दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें कि अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे, नए कौशल सीखेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और अपने देश के आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद आइए सुनवाते हैं आपको वार्ता। विषय है युवाओं के लिए कौशल विकास। वार्ताकार हैं आनंद कुमार।
1: युवाओं में कौशल विकास।

0: किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि होता है। युवा वह समय है जब मस्तिष्क में अनेक नए नए विचारों का सृजन होता रहता है, जो समुदाय और राष्ट्र को बेहतर आकार देता है। राष्ट्र की नीतियाँ, योजनाएं और विकास कार्य युवाओं के बेहतर चिंतन सोच का ही परिणाम है। विश्व के तमाम विकसित देशों ने युवाओं पर पूरा ध्यान देकर ही आज यह मुकाम हासिल किया है। देश को विकास पथ पर अग्रसर करने में युवाओं की भूमिका सराहनीय रही है। राष्ट्र में सामाजिक समरसता, बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्र की वृद्धि शामिल है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्हें सक्षम बनाने और राष्ट्र के सतत विकास के लिए पर्याप्त रूप से योगदान करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। युवाओं के समग्र विकास में ही समाज और देश का विकास निहित है, और इसलिए इन्हें पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया के विकास के रफ्तार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं की सामर्थ्य शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें इनकी ऊर्जा, नवीन विचार और दूरदर्शी दृष्टिकोण का सदुपयोग करना चाहिए। युवा निश्चित रूप से राष्ट्र के सबसे बेशकीमती संसाधन हैं। हम उनका पूरी क्षमता का सही प्रयोग करें तो हमारा देश निश्चित तौर पर एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। वे ईमानदारी से प्रयासों के साथ साथ तेजी से बदलाव और विकास ला सकते हैं। ऊंची उड़ान भरने और आकाश का पीछा करने के लिए उनमें एक जुनून है, बस एक दिशा निर्देश करने की आवश्यकता है। आज विश्व की बहुत बड़ी आबादी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद बेरोजगार है। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। उन्होंने अपने अध्ययन काल में केवल परंपरागत शिक्षा हासिल किया। परिणाम यह है कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के इस दौर में उनके पास नौकरी नहीं है और आय के कोई स्रोत नहीं है। वर्तमान समय में भारत सरकार का लक्ष्य युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर है। निष्क्रिय होकर बैठने के बजाय युवाओं को देश के विकास और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। युवा दिमागों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए देश की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की है, जिससे कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों से लेकर उच्च डिग्री धारी युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका एक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने ट्रेनिंग सेंटरों से प्रशिक्षण प्राप्त कर आज रोजगार से जुड़ गए हैं। युवा मामले का विभाग युवाओं के सशक्तिकरण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। इसने देश में युवाओं के अन्य कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इसका उपयोग युवाओं को उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। मुख्य लक्ष्य देश के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है, और इस प्रकार के ट्रेनिंग से युवा अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कौशल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य भारत में तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व मांग के अनुरूप ढालना है। यह पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि केवल परंपरागत शिक्षा पाठ्यक्रम को अपनाकर हम तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने आप को पूर्ण गतिशील नहीं बना पाए हैं, और परिणाम बड़ी जनसंख्या बेरोजगार है। इसके लिए आवश्यक है हम अपने पाठ्यक्रम में विश्व मांग के अनुसार बदलाव लाएं। आने वाले समयों में किस प्रकार की कौशल की मांग सबसे अधिक होगी, उसका गहनतापूर्वक अध्ययन करके ही हम अपने देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके अंदर कौशल को विकसित करने में मदद मिला है। योजनाबद्ध तरीके से गरीब विद्यार्थियों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके सरकार उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही है। वर्तमान भारत सरकार ने युवाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अनेक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं, जहां बिल्कुल मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। युवाओं की योग्यता के अनुसार उनके विशेष रुचि वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिक प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन आदि के तहत नौकरी प्रदान की जाती है। अगर कोई युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहे तो उसके लिए सरकार बहुत कम ब्याज के साथ ऋण उपलब्ध कराती है। इस कार्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने साथ जोड़ रखा है। विभिन्न क्षेत्र के नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार के टोल फ्री नंबर से जुड़ते हैं और इसके बाद उन्हें उनके नज़दीक ट्रेनिंग सेंटरों से जोड़ दिया जाता है। युवाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास ही एक माध्यम है। जिस प्रकार शिक्षा को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए तो रोजगार जरूर मिलेगा। कौशल विकास में बाकी देशों के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। कई प्रगतिशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले भारत में केवल 2% लोग ही हुनरमंद हैं। यह आंकड़ा हमें हमारी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। भारत मुख्यतः अपने शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित रहा है और अब उसे लोगों की काबिलियत बढ़ाने एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भारत की बड़ी आबादी को रोजगार से जोड़ा जा सके। विभिन्न देशों के बीच भारत को एक महान शक्ति के तौर पर उभारने की चुनौती को विशेष ध्यान में रखते हुए कौशल विकास पर पहल की आवश्यकता है। देश में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आवश्यक है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाने लगा है, जब उद्योग के लिए बनाए गए कुशल क्षेत्र ही उस क्षेत्र में काम करेंगे तो गुणवत्ता में अपने आप वृद्धि होगी।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था युवाओं के लिए कौशल विकास, वार्ताकार थे आनंद कुमार। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं युवाओं में तकनीकी शिक्षा का विकास विषय पर। दोस्तों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और संचार जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है। दोस्तों, ऐसे समय में युवाओं के लिए केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक हो गई है। दोस्तों, तकनीकी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो किसी व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान, आधुनिक तकनीकों और विशेष कौशल से सुसज्जित करे। इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य, आत्मनिर्भर और नवाचार के लिए सक्षम बनाना है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवाओं को सही तकनीकी शिक्षा मिले तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, मोबाइल ऐप विकास, डिजिटल मार्केटिंग, काउंसलिंग कंप्यूटर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में सफल होने के लिए तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों आवश्यक है। दोस्तों, तकनीकी शिक्षा युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह उन्हें नौकरी पाने के साथ साथ अपना स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने की भी क्षमता देता है। आज अनेक युवा अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर नए नए नवाचार कर रहे हैं और रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। हालांकि तकनीकी शिक्षा के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और प्रयोगशाला और डिजिटल संसाधनों की कमी, इंटरनेट की सीमित पहुंच, प्रशिक्षण, शिक्षकों का अभाव तथा आर्थिक कठिनाइयां कई युवाओं के लिए बाधा बनती हैं। इस

आवश्यक है कि सरकार, शैक्षणिक संस्थान और समाज मिलकर इन समस्याओं का समाधान करें ताकि प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नई तकनीक सीखने के लिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने, डिजिटल कौशल विकसित करने और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने के लिए करना चाहिए। सीखने की आदत ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। तकनीकी शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि यह हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूत नींव बनाती है। जब हमारे युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तभी भारत नवाचार, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रशिक्षण में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे युवाओं में तकनीकी शिक्षा का विकास विषय पर। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज का युवाने कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या को। आपसे पुनः मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज के ध्वनि तरंगों पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बारी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, जो सब्जियां की खेती और मक्के की खेती से संबंधित आपसे जानकारियाँ साझा करने के लिए उतारू हैं। आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी मेरा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, प्राचीन काल में खेती प्रकृति के संतुलन पर आधारित थी, जिसमें बैलों से जुताई, प्राकृतिक खादों का उपयोग और मौसम चक्र के अनुसार फसलें उगाई जाती थी। उस समय चावल, गेहूं, जौ और बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती थी, और जो गांव में जो रहट का जो सिस्टम था और नहर से सिंचाई होती थी
0: जी।
1: और प्राचीन भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं, जो तरीके जो हैं, उसमें है कि मिश्रित खेती, एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाई जाती थी, जैसे अनाज के साथ दालें, जिसमें भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती थी। वर्षा के जल को सहेजने के लिए तालाब बनाए जाते थे, और ढलान वाले खेतों में पानी को रोकने के लिए समुच्च खेती की जाती थी। फसलों को कीड़ों से बचाने और उपजाऊ बनाने के लिए नीम, गोमूत्र और गोबर का उपयोग किया जाता था। कृषि पंचांग के अनुसार मौसम और नक्षत्रों को देखकर बुआई की जाती थी। यदि आप प्राचीन काल के तरीकों को अपनी खेती में आजमाना चाहते हैं, तो आधुनिक जैविक खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए जैविक खेती पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का भी आप उपयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ किसान बंधु, तो इस प्रकार से जैविक खेती पर ज़्यादा बल देने की आवश्यकता हमें पड़ जाती है, और जैविक खेती अपना करके हम काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम जैविक खेती के लिए, जो भी जैविक खेती से हम फसल उपजाते हैं, मुँह मांगा दाम हम बाज़ार से प्राप्त करते हैं। और बातें हम कर रहे थे आपसे बीन्स की भी, कि आज बीन्स की भी बातें होंगी, फ्रेंच बीन की। तो किसान बंधु, हम आपको बताते चलें कि फ्रेंच बीन्स हरी पौध सब्जी के रूप में खाई जाती है, तथा सुखा कर इसे राजमा, लोबिया वगैरह के रूप में भी खाया जाता है। हरी बीन्स या सामान्य भाषा में फ्रेंच बीन्स की मुख्यतः इसमें जो है पानी, प्रोटीन, कुछ मात्रा में वसा तथा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायरिन, नियासिन, विटामिन सी, कई तरह के मिनरल इसमें मौजूद होते हैं। बीन्स विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है किसान भाई। इसकी खेती अगर हम करना चाहें तो इसको, इसकी जो झाड़ीदार किस्में हैं उसमें है कंटेंडर, पार्वती, आकार कोमल, पंत अनुपमा तथा प्रीमियर। और बेलदार किस्में जो इसकी हैं वो हैं केटकी वंडर, पूसा हिमलता एवं VN1। और जलवायु की जहाँ तक बात आती है, तो फ्रेंच बीन के लिए हल्की गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 18 से 24 डिग्री का जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। अधिक ठंड तथा गर्मी दोनों इसके लिए हानिकारक हैं, और इसकी सफल खेती के लिए लगातार 3 महीने अनुकूल मौसम हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं।
1: और दूसरी बात अगर हम भूमि की करें, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए भारी और अम्लीय भूमि वाली मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। किसान भाई, अगर हम किस्म की बात करें, तो झाड़ीदार जो किस्म है उसके लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, और बेलदार जो किस्म है उसके लिए 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम बुआई का समय की बात करें, तो उत्तर भारत में जहाँ पर सर्दी अधिक होती है, इसकी बुआई 2 बार अक्टूबर और फरवरी में की जा सकती है। हल्के ठंड वाले स्थानों पर नवंबर से पहले सप्ताह में बुआई उपयुक्त है। पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी, मार्च और जून माह में भी बुआई की जा सकती है। अगर हम दूरी की बात करें, तो बीज की बुआई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन बेलदार किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति 100 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, तथा पौधों को सहारा देने का प्रबंध आवश्यक है। बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी का होना भी जरूरी है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचार कर लें। नेत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी में अंतिम जुताई पर मिलाएं। तथा 20 क्विंटल नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में फूल आने के समय प्रयोग करें। गोबर या कंपोस्ट खाद को खेत की तैयारी के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। बुआई के बाद बीज अंकुरण के समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता है, इसके लिए 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतराल पर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खरपतवार की अगर हम बात करें किसान भाई, तो 2 से 3 बार निकाई और गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के लिए काफ़ी है। एक बार पौधों को सहारा देने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 लीटर स्टाम्प का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंतराल पर घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तुड़ाई की अगर हम बात करें किसान भाई, तो तुड़ाई फूल आने के 2 से 3 सप्ताह बाद आरंभ हो जाती है। तुड़ाई नियमित रूप से जब फलियां नरम और कच्ची अवस्था में हो तभी करें। उपज की अगर हम बात करें किसान भाई, तो हरी फली उपज जो है 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। यह प्रजाति के प्रकार पर भी निर्भर करती है।
0: जी हाँ ग्रामीण बंधु, इस प्रकार आप प्रिंचमिन की खेती कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन, और सब्जियां की खेती के लिए तो अभी का जो समय है वो बहुत ही उपयुक्त है किसान बंधु, और हमारे ग्रामीण भाई बहन इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात किसान भाई कि अभी मक्का की खेती में हमारे ग्रामीण भाई लोग बहुत मशगूल हैं उसे करने में, और मक्का की बुआई का समय अभी कुछ दिन और 4 से 5 दिन लगभग सप्ताह भर के आसपास रह चुका है किसान भाई बहन, इसलिए आप अगर बुआई में विलम्ब कर चुके हैं तो जल्द कर लें आप। और किसान भाई बहन, हम आपको बताते चलें कि उर्वरक और खाद में प्रबंधन हम किस प्रकार से करें। तो बुआई के समय 50 से 70 किलो DAP या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो मिलाया हुआ है NPK, 45 किलो यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट का उपयोग आप खेतों में करें प्रति हेक्टेयर की दर से। फसल जब 25 दिन की तैयार हो जाए तो 10 किलो यूरिया और 25 किलो सागरिका का उपयोग आप कर सकते हैं। फसल 45 दिन के होने पर 45 किलो यूरिया का उपयोग करिए। किसान भाई बहन, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की बात जहां तक आती है तो मक्के में जल भराव नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी बहुत आवश्यक है। सिंचाई के लिए अगर हम बात करें तो बुआई के तुरंत बाद यानी 7 से 8 दिन पर एक बार करने के बाद, अगर आप बुआई कर दिए तो तुरंत बाद कर दीजिए, और फिर 7 से 8 दिन बाद हल्का पानी आप दीजिए। फूल आने और भुट्टा बनते समय नमी की कमी नहीं होने दीजिए आप। और खरपतवार की बात जहां तक आती है तो 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन की फसल पर निराई गुड़ाई एक बार आवश्यक है। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के 3 से 5 दिन के भीतर एट्राजिन का छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जहां तक कीट एवं रोग की बात है तो तना छेदक का प्रकोप आप देख सकते हैं किसान भाई, तो इससे बचाव के लिए बुआई के समय बीज उपचार जरूर करें आप किसान भाई बहन। और प्रकोप अधिक होने पर कृषक हम भाई जो हैं वो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल भी अपने खेतों में कर सकते हैं। तो इस प्रकार मक्का में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है किसान बंधु, क्योंकि मक्का यहाँ की मुख्य खाद्य पदार्थ है और हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन मक्का की खेती करते हैं, तो और मक्का से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भी होती है, इसलिए मक्का की खेती में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये तो बातें हो गई फ्रेंच बीन की, मक्का की खेती की, और अब ये सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: आइए अब सुनते हैं वार्ता मृदा क्षरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी। वार्ताकार हैं संध्या चंद्रा।
1: के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, निकल एवं क्लोरीन। इनमें जस्ता, लोहा एवं बोरान का प्रमुख स्थान है। साधारणतः इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक उपज देने वाली फसलों के प्रभेदों का फसल चक्रों में समावेश, गहन खेती, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं जैविक खादों की उचित मात्रा मृदा में नहीं डालने के कारण हो रहा है। फसल उत्पादन में 4 बिंदुओं पर मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता होती है। सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण

0: मृदा फसलोत्पादन में चार बिंदुओं का मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता होती है, सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्र, फसलों द्वारा मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास एवं पौधों में पोषक तत्वों की अदृश्य शुद्धता कमी एवं अधिक की जानकारी से प्राप्त होता है। अब देखते हैं पोषक तत्वों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों पर प्रभाव एवं कमी के लक्षण। नाइट्रोजन, यह पौधों के तने, शाखाओं एवं पौधों पत्तों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि में सहायक है। मृदा में इसकी अधिकता से पौधे बढ़कर गिर जाते हैं, रोगों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, दाने कम लग पाते हैं तथा विलंब से पकते हैं। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। हल्के हरे रंग के नीचे के पत्ते पपीते पीले रंग से लेकर भूरे रंग के हो जाते हैं। डंठल एवं तना छोटे और पतले हो जाते हैं। फास्फोरस, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक है एवं दोनों को पुष्ट करता है। फास्फोरस आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है तथा कीटों एवं रोगों के प्रकोपों को रोकता है। फसलें समय पर पकती है। इसकी कमी से गहरे हरे रंग का पौधा बैंगनी रंग, जो बाद में स्याही युक्त तथा लाल रंग में बदल जाता है। पोटैश की मात्रा, यह पौधों में चीनी एवं स्टार्च बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके साथ ही उनमें प्रतिकूल मौसम एवं कीटों तथा व्याधियों से बचने की क्षमता में वृद्धि लाता है। इसके अलावा पौधों में तना एवं डंठलों को मजबूत बनाता है। इससे पौधों में जलधारण की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण नीचे के पत्तों पर निर्जीव रेशे के धब्बे, चितकबरे या पीले होते हैं या फिर इनमें हरेपन की कमी होती है। इन मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक खादों एवं रासायनिक उर्वरकों द्वारा की जाती है। पक्के फसल के लिए अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जस्ता, यह पौधों के अंदर इंडोल एसेटिक एसिड नामक हार्मोन का निर्माण करने एवं उनकी वृद्धि में सहायक करता है और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसकी कमी के लक्षण कुछ प्रमुख फसलों में इस प्रकार से है, जैसे धान रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती पर लाल भूरे रंग के बिंदु प्रकट होते हैं। ये तुरंत आपस में मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बे बना लेते हैं और अंत में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। इसे धान के खैरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखते हैं मक्का। जस्ते की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नवीन पत्ती मतलब नए पत्ते के आधार के तंतु मध्य शिरा के दोनों तरफ से सफ़ेद पीले रंग में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इससे तने की दो घाटों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है और पौधों का आकार छोटा दिखता है। गेहूं में जस्ते की कमी के लक्षण कल्ले निकलने समय दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती के मध्य शिरा एवं किनारों के बीच के भागों में हल्के पीले रंग की धारी बन जाती है और आगे चलकर भूरे रंग में बदल जाती है। पत्ती बीच से सिकुड़ने लगती है और सूख जाती है। चना एवं मसूर में जस्ते के अभाव में पौधों के बीच के भाग की पत्तियों का हरा रंग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये पत्तियां सूखने लगती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। शाखाएं कम निकलती है और पत्तियां आकार में छोटी दिखती है। प्याज, जस्ते की कमी होने से पौधे का विकास रुक जाता है। ऊपरी पत्तियां टेढ़ी हो जाती है और आगे चलकर सिकुड़ना एवं सूखना प्रारंभ कर देती है। प्याज की गांठें आकार में काफ़ी छोटी हो जाती है। जस्ते के अनुप्रयोग की विधि कैसे करते हैं। मृदा उपचार विधि फसल की बुआई या रोपाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिला दिया जाता है। इसका असर चूना युक्त मृदा में 4 तथा अन्य मृदाओं में 6 फसलों तक रहता है। मृदा में 50 क्विंटल कंपोस्ट और 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की जाती है। इससे काफ़ी लाभ होता है। अब देखते हैं छिड़काव की विधि क्या है। किसान भाई, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2.5 किलोग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव कर देने से जस्ते की कमी के लक्षण दूर हो जाते हैं। इसमें फसलों की उपज में 30-40% तक वृद्धि हो जाती है। लौह तत्व में जैसे पौधों की पत्तियों में हरे रंग के उत्पादन में लौह तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। चूना युक्त मृदा में धान की पौध को लौह तत्व की कमी से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। लौह तत्व की कमी होने पर सबसे ऊपर की पत्ती का रंग पीला सफ़ेद होने लगता है और बाद में पूरी पत्ती सफ़ेद रंग में बदल जाती है तथा सूखने लगती है। तो आइए देखते हैं लौह तत्व की अनुप्रयोग विधि। मृदा अनुप्रयोग, जैसे मृदा में लौह तत्व की कमी को पेफरस सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पाइराइड 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालकर पूरा किया जाता है। फेरस सल्फेट को बुआई के समय अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर मृदा में डाल देना चाहिए, लेकिन पाइराइड को बुआई से 25 दिन पहले मृदा में डाल देना चाहिए जिससे रासायनिक क्रिया पूरी हो सके। साथ ही किसान भाई पत्तियों पर फेरस सल्फेट घोल का छिड़काव किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। लोहे की कमी 1-2% फेरस सल्फेट का पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव से पूरी हो जाती है। साथ ही बोरान में यह पौधों का एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और पौधों के भीतर शर्करा के स्थानांतरण को बढ़ाता है। बोरान परागण तथा प्रजनन क्रिया एवं कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह पौधों में पुष्प फल तथा बीज बनने की क्रिया को संपादित करता है। बोरान की कमी को बोरेक्स या सुहागा द्वारा पूरा करते हैं। चूना युक्त तथा भारी मृदाओं में बुआई के समय 15-16 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। चूना रहित हल्की बलुई मृदा में 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स का अनुप्रयोग करना चाहिए। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। अधिकांश फसलों को 15-16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स की आवश्यकता होती है। किसान भाई पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त करते हैं। साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधों को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तेल के लिए उगाई जाने वाली यह दुनिया की सबसे पुरानी फसल है। जिन कठिन परिस्थितियों में दूसरी फसल नहीं होती वहाँ भी तिल को उगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे अधिक तिल एक्सपोर्ट करने वाला देश हमारा देश है। जापान इसका सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। तिल का तेल तथा साबुत तिल खाना बनाने में बहुत काम लिया जाता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य का एक कारण हो सकता है। तिल में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कॉपर प्रचुर मात्रा में होता है। मैग्नीज का भी यह अच्छा स्रोत है। साथ ही किसान भाई मिट्टी में डाले जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं। पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार इसे कुछ प्रकार में विभाजित किया जाता है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधे को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि करेले सब्जी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेला अपनी कड़वाहट के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके गुण इसकी कड़वाहट में ही छिपे होते हैं। गुणकारी होने के कारण ही करेला सब्जियों में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होते हैं। यह खनिज से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए इसमें प्रचुरता में होते हैं। विटामिन बी समूह के कॉलेट, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड आदि भी इसमें इसके उपयोग से मिलते हैं। अब आइए देखते हैं मिट्टी में डाले जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रेट। नाइट्रोजन का वह रूप जो पौधों का उपयोग करता है, पौधे की पत्ती के विकास को प्रभावित करके पत्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह क्लोरोफिल उत्पादन की मदद से पौधों को उनका हरा रंग देने के लिए भी प्रभावशाली है। फास्फोरस, फास्फोरस जड़ों और फूलों की वृद्धि के साथ सहायता के लिए जिम्मेदार है। फास्फोरस पौधों को पर्यावरणीय तनाव और कठोर सर्दियों का सामना करने में भी मदद करता है। किशन भाई, गेहूं में भी वे सारी खूबियां हैं जो एक भोजन में होना चाहिए। यह भरपूर ऊर्जा का स्रोत है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में करीब 339 किलो कैलोरीज ऊर्जा, 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 14 ग्राम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज आदि समेत जीवन के कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक करीब 62 के आसपास होता है, तो इस तरह से वह काफ़ी फायदेमंद और इस तरह मृदा में पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं और इसकी उपयोगिता भी काफ़ी होती है।
1: किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे संध्या चंद्रा की वार्ता। विषय था मृदा, क्षरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी। और अब चूंकि हमारा समय आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को इजाजत। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के साथ हाजिर हैं। आपको भी हमारा नमस्कार।
2: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम ठंडा एवं अत्यधिक नम जो है बना रहेगा, लगातार वर्षा के कारण तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। वर्षा, गरज चमक और तेज हवाओं के कारण मौसम अस्थिर बना रहेगा। आंधी, तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवा के झोंके आदि आ सकते हैं। जमीन के पास तेज हवाएं चलेंगी, फसलों का गिरना, फलों का टूटना, ये चलते रहेगा।
1: जी हाँ किसान भाई बहन, और किसान भाई, किसी भी फसल की बुआई से पहले जल निकासी आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिए, तभी बुआई के लिए आप खेतों में जाइए। जिन किसान भाइयों का खेत अभी भी परती रह गया हो, वे अविलंब अनेक फसल की बुआई अनुशंसित विधि से करें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। जिन खेतों में धान का रोपा करना हो, वैसे खेतों के मेड़ को दुरुस्त रखें तथा खेत को जोतकर मिट्टी को खुला छोड़ दें, जिससे जल जमाव के साथ साथ खेत में मौजूद खरपतवार भी भली भांति सड़ जाए। संक्रमण से बचने और वायु परिसंचरण में सुधार के लिए क्षतिग्रस्त और सड़ते हुए फलों और पीले रोगग्रस्त पत्तियों को हटा दें हमारे किसान भाई। और जो किसान भाई पहले से ही बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण

समान रूप में नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज को बो दें, या अगर एक ही पौधों की संख्या ज़्यादा हो गई हो तो उसे उखाड़ कर खाली जगह में लगा दें। और खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें किसान भाई बहन आप, और जल निकासी की सुविधा करें तो ज़्यादा बेहतर।

0: बैगन तथा मिर्च के फसल जो 35 दिन से 40 दिन पुरानी हो गई हो उसमें निकाई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण अवश्य कर लें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई करें। रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। मक्का के लिए किसान भाई, वर्षा के बाद या साफ मौसम होने पर मक्के की फसल में फफूंद संक्रमण को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों को 20x10 RP सेंटीमीटर के अंतर पर तैयार खेतों में रोपें। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई से पहले इस्तेमाल करें। जिन धान के खेतों में पानी भरा हुआ है उसमें एक पैकेट नील हरित शैवाल डालें, क्योंकि यह नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत है।
1: जी हाँ किसान बंधु, मौजूदा मौसम की स्थिति, धान की नर्सरी में धान के ब्लास्ट और जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग के संक्रमण का कारण बन सकती है। अभी यदि नर्सरी में लीफ ब्लास्ट दिखाई देता है तो टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राई फ्लोक्सी एस्ट्रोबिन 25% WG 0.4 ग्राम या आइसो प्रोथेलियोन 40 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप छिड़काव करिए। 7 से 10 दिनों के अंतराल पर आप छिड़काव को दोबारा कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं आप इसे। बीच बीच में सूखा और गीला मौसम, जल्दी बोई गई नर्सरी में BLB के प्रकोप के लिए अनुकूल है। रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला करके आप पत्तियों पर छिड़काव करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान बंधु,
0: पिछली बारिश के कारण मिर्च और बैंगन में फल सड़न का संक्रमण होने की संभावना है। यदि ऐसा हो तो कार्बेडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा और तीसरा छिड़काव भी आप कर सकते हैं। जुलाई में टमाटर की नर्सरी में पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय होता है, तो बीज को ट्राइकोडर्मा विरडे 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बोने से 24 घंटा पहले बीज उपचारित करना चाहिए। आप अगर उन्नत किस्मों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो टमाटर के लिए स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा शंकर 1, यह प्रमुख जो है उन्नत किस्में हैं टमाटर की। अगर हम पशुपालन की बात करें किसान भाई, तो जुगाली करने वाले पशुओं को नई घास चरने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नेमोटोड बीमारी की संभावना रहती है, जिसमें एनीमिया और दस्त जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके लिए फेनबेंडाजोल 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से पशुओं को दें।
1: जी हाँ किसान बंधु, तो कार्यक्रम में ये हो गई बातें हमारे ग्रामीण भाई बहन आपसे मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त था। जी हाँ ग्रामीण बंधु, और कार्यक्रम में अब आइए हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के
0: बाद पुनः हाजिर हुए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: संदेश के बाद पुनः आपका किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, नींबू वर्गीय पौधों की देखभाल। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
7: सूबे में आसानी से की जा सकती है और इससे हमारे ग्रामीण बंधु बहुत अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों की खेती हम किस प्रकार से करें, क्या क्या वैज्ञानिक तकनीकियां उसमें अपनाएं, इससे संबंधित विशेष जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
8: नमस्कार आपको संतोष जी और श्रोता बंधुओं को भी।
7: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि हमारे ग्रामीण भाई बहन जो फलोद्यान लगाना चाहते हैं, तो विशेषकर नींबू वर्गीय अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान भाई खेती शुरू करें?
8: जमीन के लिए लाल मोरम वाली जो भी जमीन है, जो हम लोग टाण बोल सकते हैं, और जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, वो जमीन नींबू वर्गीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। केवल ध्यान किसान भाइयों को ये देना होगा कि यदि मोरम युक्त जमीन हो और ज़्यादा कंकड़ीला हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग गड्ढा तैयार करेंगे, तो गड्ढे का साइज जहाँ जनरल में हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट रखते हैं, वहाँ हम लोग 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई चौड़ाई और गहराई में रखना फायदेमंद है।
7: अच्छा।
8: और यदि ज़्यादा कंकड़ीली जमीन है, तो उसमें किसान भाई जो मिट्टी के भरने की बात आती है, तो ऊपर वाले मिट्टी को रखेंगे और नीचे वाली जो कंकड़ीली मिट्टी है, तो नीचे जब हम भरेंगे तो तालाब की मिट्टी 20-25 केजी और उसी में 20-25 केजी गोबर का खाद मिला करके गड्ढा भरने के समय में नीचे डालेंगे, तो सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब नींबू वर्गीय फल की हम लोग बात करते हैं
7: जी,
8: तो हमारे मन में आता है कागजी नींबू, संतरा, ये दो मुख्य रूप से आती है। और अभी के समय में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 3-4 वर्षों से हम लोग जिला के विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को संतरा के उत्पादन के लिए बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ के लिए इतना सुंदर जलवायु है, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिठास जो आपको यहाँ के फलों में मिलेगी, वो ओरिजिनल फल जहाँ से होता है, वही टेस्ट आपको यहाँ का जो उत्पादन होता है, संतरा हो, नींबू हो, ये सब में आपको वही टेस्ट मिलेगा।
7: अच्छा।
8: तो जहाँ तक हम लोग जलवायु की बात करें, तो यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, पूरा ड्राई नहीं है, अर्ध शुष्क है। और ये जो पूरा पलामू पर मंडल की हम लोग बात करें, गढ़वा, लातेहार, मेदिनीनगर का पार्ट, चतरा का पार्ट, तो ये सब संतरा उत्पादन के लिए, कागजी नींबू के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें यह है कि इसमें यदि किसान भाई अपना सालों भर का शेड्यूल बना करके केवल बाग में घूमते रहें, तो उत्पादन हमेशा होता रहेगा।
7: बिल्कुल।
8: सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग नींबू वर्गीय खेती की बात करते हैं, तो दो तरीका से इसको हम लोग फल को बांटते हैं, एक मीठा फल हो गया, एक खट्टा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान

0: फल। तो खट्टा फल में हम लोग लेमन और लाइम दो है, तो लेमन में जो हम लोग कागजी नींबू की बात करते हैं वो लेमन बर्क का हो गया, और उसमें क्या है छिलका पतला है, तो वो नींबू जो है इसका समय आता है कि साल पूरे साल में 5 बार इसमें फूल आने की संभावना रहती है, तो आप मैनेजमेंट करेंगे बढ़िया से तो 160 दिन में फूल लगने से 160 दिन के बाद आपको फल मिलेगा, और 5 बार यदि सिस्टम को आप मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा बाजार को पकड़ सकते हैं। और जहां तक संतरा की बात करें या मीठा नींबू की बात करें, गागर जो होता है हम लोग उसकी बात करें, तो वो सब कल जो फूल लगा तो फूल लगने से उनका कार्यकाल होता है 265 दिन के अंदर में वो बाजार में जाने लायक होते हैं। तो 265 दिन की हम लोग बात करें तो 20-30 दिन यहाँ पहले तैयार हो जाते हैं
1: अच्छा
0: बाजार में भेजने के लिए। तो हम लोग इसको यदि मेंटेन करें तो बाजार को हमेशा पकड़ सकते हैं, और इसकी मांग ऐसी है कि कभी कम नहीं होती है। तो इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसान भाई सालों भर अपने दिमाग में प्रोग्राम बना करके रखें इसका मेंटेन करने के लिए, यदि मेंटेन नहीं करना चाहेंगे तो साइट्रस में एक साइट्रस डिक्लाइन की प्रवृत्ति होती है, मतलब खुद से पौधा सूखने लगेगा, मरने लगेगा, और फिर मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई इस चीज को यदि ध्यान में रखेंगे शुरुआत से ही तो बहुत फायदा है इसमें।
1: सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
0: देखिए सिंचाई जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप मार्च के बाद से ही देखेंगे कि पानी की कमी शुरू हो जाती है, तो मार्च अप्रैल मई और आधा जून वो पानी का कमी हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पे है, हम लोग शहरी स्थिति को देखते हैं, लेकिन गांव में या जहाँ पे किसान भाई खेती करते हैं तो वो पलवार का प्रयोग करें तो पानी उनको कम खेत में देना पड़ेगा। पलवार मल्चिंग जैसे प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, सूखा घास वगैरह है उसको जो है जड़ से कम 2-2.5 बीता छोड़ करके चारों बगल में 15 सेंटीमीटर की मोटाई में डालेंगे तो पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और पानी भी आपको 7-8 दिन के अंतर पे देना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: तो इस तरीका से पानी की डिमांड को हम कम कर सकते हैं। दूसरा चीज है ड्रिप इरिगेशन की बात हम करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में किसान भाई को यह ध्यान देना है कि ड्रिप इरिगेशन में वो सिस्टम बना रहता है कि 1 घंटा में 4-4.5 लीटर तक पानी आता है, तो दोनों साइड में 0.5 मीटर की दूरी पे पाइप जड़ से रहेगा, और उसको जो है 1 घंटा चलाएंगे 4-5 दिन के अंतर पे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो पानी की समस्या नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें ये है कि हम ज्यादा पानी न लगने दे, ये हमको देखना है।
1: अच्छा, तो नींबू वर्गीय में हमारे ग्रामीण बंधु को सबसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पानी उसमें न लगने दे, नहीं तो फसल बर्बाद हो सकती है।
0: हाँ, किसान भाइयों को ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे वो नींबू की खेती करते हैं बड़ा प्लॉट है तो उस प्लॉट को छोटे छोटे भागों में बांट लें, और छोटे छोटे भाग में बांट करके पानी की उचित निष्कासन की व्यवस्था रखें, और उसमें जो पानी है जमने न दे, हल्का सा ढाल हो। सबसे आसान सा चीज ये है कि फसल लगाने से पहले वो पूरे खेत की जुताई कम से कम 3-4 बार कर ले, और पट्टा दे करके उसको सब प्लॉट में छोटे छोटे प्लॉट में बांट करके पौधा लगा सकते हैं
1: जी। और उर्वरक की बात अगर आती है तो क्या कर सकते हैं हमारे ग्रामीण बंधु?
0: उर्वरक इसके लिए चूंकि 5 बार हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती का फलस आता है, तो इसके लिए उर्वरक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। उर्वरक का सीधा संबंध है प्रोडक्शन से।
1: अच्छा।
0: तो जब हम लोग फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के समय में हम लोग 15 से 25 केजी के बीच में कंपोस्ट देने का रिकमेंडेशन करते हैं, और यहाँ पे झारखंड के केस में 300 से 500 ग्राम डीएपी वो प्रयोग कर सकते हैं
1: प्रति हेक्टेयर
0: प्रति गड्ढा।
1: अच्छा।
0: और 50 से 60 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस गड्ढा के समय में लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जब जैसे हमारा फसल होते जा रहा है तो हम इसको जो हमारे यहाँ सिचुएशन है ऐसे हम लोग चाहें तो 3-3 महीना के अंतराल पे दे सकते हैं, लेकिन चूंकि किसान भाइयों के पास चूंकि पानी या ये सब का दिक्कत होता है तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जून जुलाई में एक बार खाद देंगे, और दूसरा खाद जो है सितंबर अक्टूबर में देंगे।
1: अच्छा,
0: तो सितंबर अक्टूबर में देंगे और एक ये करना उनको है कि दोनों समय में गोबर खाद मिलाएंगे।
1: अच्छा।
0: और गोबर खाद देते समय में जरूर क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे, 60-70 ग्राम प्रत्येक गड्ढा में क्लोरोपाइरीफॉस का यूज करेंगे। और जहाँ तक खाद की बात है तो डीएपी शुरुआत में किसान भाई 300 एक पहला साल 300 डीएपी रखेंगे, 500 यूरिया रखेंगे और 200 से 300 के बीच में पोटास रखेंगे। इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 5-6 साल बाद स्थिर कर लेंगे। स्थिर कर लेंगे उसमें उनको क्या करना है कि डीएपी की मात्रा को 1 kg तक पहले जब दे रहे हैं तो 800 ग्राम से 1 kg के बीच में डीएपी देंगे और 400 से 600 ग्राम के बीच में पोटास देंगे। और उनको लगे कि कंपोस्ट यदि ज़्यादा दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा कम देंगे और कंपोस्ट ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है
1: जी।
0: इसके अलावा किसान भाइयों को ये मेरा सलाह है कि प्रत्येक गड्ढा में शुरुआत में हो जिंक सल्फेट और बोरोन, जिंक सल्फेट 50 ग्राम और बोरोन 20 ग्राम हर एक साल कम से कम दे।
1: अच्छा।
0: तो इससे उनकी उर्वरक की डिमांड पूरी होगी।
1: अच्छा, कभी कभी हमारे ग्रामीण बंधु लोग जिसे प्रथम वर्ष में जिसे फल फूल अगर लग रहे हो तो उस स्थिति में उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: शुरुआत में किसी भी नींबू वर्गीय या किसी भी फल के मैं बात करूं तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि जो पहला साल वो लगा रहे हैं
1: जी,
0: चूंकि वो गुटी वाला रहता है तो उसमें कंडीशन है कि वो आएगा ही फूल, तो किसान भाई ऐसी स्थिति में फूल को 3 साल तक किसी कीमत पे नहीं लेना है।
1: अच्छा।
0: 3 साल तक किसी कीमत पे नहीं लेंगे
1: जी।
0: और उनको ये करना है कि शुरुआत में किसान भाई पौधा सीधी तरीका से जाए, उसके लिए वो एक डंटा 3-4 फीट का रखेंगे, उसी में पौधे को बांध देंगे। लेकिन डंटा को जमीन में गाड़ने से पहले 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिला करके उसको ट्रीट कर लेंगे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और उसको नीचे रखेंगे, उससे दीमक का प्रकोप कम होगा। और शुरुआत के जो 50 से 60 सेंटीमीटर का है वहाँ तक कली निकलने नहीं देंगे।
1: अच्छा।
0: और उसको सीधे बढ़ने देंगे।
1: अच्छा।
0: कहीं पे भी उनको लगे तो जैसे ही हुआ तो 60 डिग्री के अंतर पे 1-2 पौधा, फिर 30 सेंटीमीटर के बाद दूसरा कली निकलने देंगे। और कहीं पे भी 3 साल तक फुल सिम्टम्स दिख रहा है तो इमीडिएट उसको प्रैक्टिकल के तौर पे छोड़ेंगे नहीं, इमीडिएट उसको उनको तोड़ देना चाहिए।
1: नींबू वर्गीय पौधों से छूटी खेतीबाड़ी में और ऐसी कोई बात?
0: किसान भाइयों को एक काम हमेशा करना चाहिए, जब भी नींबू की खेती कर रहे हैं तो समय समय पे उनको अपने बाग को घूमना चाहिए।
1: अच्छा।
0: जैसे इसमें एक होगा, कभी देखेंगे कि पत्ती बहुत छोटा हो रहा है तो साइला नामक कीड़ा माइकोप्लाज्म से होता है, तो उसके लिए उनको कीटनाशक का छिड़काव कम से कम 2-3 छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जब पत्ती छोटी होने लगे। दूसरा चीज होता है कि कहीं कहीं जो है उनको गोंद जैसा नजर आने लगे, वो फंगल अटैक है। उस फंगल अटैक को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेत में बेविस्टीन, मैनकोजेब या ब्लू कॉपर का छिड़काव करना चाहिए। ब्लू कॉपर का छिड़काव करते हैं तो 1 लीटर में 3 ग्राम मिलाएंगे।
1: अच्छा।
0: वेविस्टीन हो तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। दूसरा एक चीज आता है कैंकर, जो उनको फल जब लगेगा उस स्थिति में आती है, पत्ती में काला काला दाग हो जाएगा, फल में काला काला दाग हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में किसान भाइयों को कैंकर से बचाव के लिए दवा एस्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा है उसका 10 लीटर पानी में 1 ग्राम घोल करके समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए,
1: तो इससे बचाव हो
0: तो ये उनका ओवरऑल हो गया। एक चीज आती है यहाँ पे कि कभी कभी फल में छेद, फल मक्खी का भी प्रकोप होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके लिए किसान भाई को मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा, जो पानी का बोतल, जो हम लोग 1 लीटर वाला पानी का बोतल पीते हैं, उसी का जो गर्दन है, गर्दन से नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर के पास में काट करके 3 तरफ से कर लेंगे और उसको ऊपर साइड वाला में नहीं काटेंगे और एक तरीका से छेद कर लेंगे, एक लियोर बनाएंगे। कभी इसको हम लोग रखें कि वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाएं, या हो सकता है कि मैं केवीके से आ करके किसान भाई सलाह ले सकते हैं कि लियोर मिथाइल यूजेनॉल का प्रयोग करके वो कर सकते हैं, तो उससे फल मक्खी का हम लोग कंट्रोल करते हैं।
1: उसको लगाएंगे कहाँ पर?
0: पेड़ में लगा देना है उनको,
1: अच्छा
0: 8-10 पेड़ के बीच में एक जगह लगा देना है, और उससे क्या है कि फल मक्खी कंट्रोल हो जाती है।
1: तो ये थी बातें नींबू वर्गीय पौधों की खेती की, और हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और नींबू वर्गीय पौधों से संबंधित जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई बहन, अब इन्हीं संक्षिप्त जानकारी के साथ अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत।
1: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 GI टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और BLO BLA की बैठक संपन्न। CEO ने कहा, SIR में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने JPSC कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-side एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 GI टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे राज्य का विकास तेज होगा। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों को मिलान हुआ। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ASDD सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। श्री कुमार ने बताया कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली अंतिम बैठक में ASDD सूची को अंतिम रूप देकर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
1: 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनके बारे में चर्चा होगी। उनका नाम भारत फॉर्म में नहीं आएगी। अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड, डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका भी नाम भारत फॉर्म में नहीं जाएगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया जाएगी।
0: इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि प्रपत्र वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। उन्होंने वोटरों से BLO को सहयोग करने की अपील की है।
2: लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से मतदाता को इसमें आगे बढ़ चढ़कर BLO को मदद करें और अपना एक गणना प्रपत्र भर के दे और एक अपने पास रखे ताकि रेफरेंस के लिए बाद में मदद। लास्ट डेट के लिए मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन कार्यालय का, वेट न करें।
0: उधर गुमला में सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और BLO BLA 2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने 6 बूथों का औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने और हर पात्र नागरिक को जोड़ने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदान केंद्रों पर लगाए गए शिविरों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग केंद्रों पर पहुंचकर फोटोयुक्त प्रपत्रों का सत्यापन कराते देखे गए। बिना मैपिंग वाले वोटरों का अन्य राज्यों की सूची से मिलान किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री और

0: धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मलिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री दीपक बिरुवा और विधायक कल्पना सोरेन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया।
1: उम्र उन्होंने खुद को समाज के लिए और आम जनों के लिए हमारे साथ विधानसभा में बतौर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चित रूप से आज जो वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी अनुभव, उनका जो समाज के प्रति दिया हुआ संदेश है, वो हमारे बीच रहेगा।
0: इसके बाद उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया, जहाँ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है।
2: जेपीएससी में जो बरती गई अनियमितता, उसके विरोध में हम सभी आज जेपीएससी कार्यालय घेरने आए हैं। जो कटअप मार्क जारी नहीं किया गया, लगातार छात्र लोग अपनी बातों को रखने का काम जेपीएससी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के, फिर भी जेपीएससी गहरी निंद्रा में सोई हुई है। को सड़क से लेकर सदन तक का पुरजोर विरोध करेंगे।
0: रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धनबाद में मानसून के दौरान कोयले के निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बस्ता कोला विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने खदानों में जल जमाव रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
3: हम सभी जानते हैं कि देश में कोयले की बहुत ही मांग है, थर्मल पावर को कोयले की बहुत आवश्यकता है, तो इस मानसून पीरियड में भी सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोयले का निर्विघ्न डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन आदि होता रहे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसी सारे विषयों पर मीटिंग ली गई। सबने विश्वास दिलाया कि बस्ता कोयला का जो टारगेट है 35.5 लाख टन, उससे भी अधिक ये बढ़कर करेंगे।
0: हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देशभर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।
4: अभी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मोदी जी, क्योंकि उनको देख के हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वुमेन को, बच्चों को या जिनको जरूरत है उनको हम काम देते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वही हमारा भी नारा है एंड कोशिश करेंगे कि और बढ़ाएंगे और उनसे प्रभावित होकर और अच्छा काम करें।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओमान के मस्कट में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीमों में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। महिला टीम में संदीपा, पुष्पा, श्रुति, नीलम और खिल्ली कुमारी को, जबकि पुरुष टीम में आशीष तनीपूर्ति को जगह मिली है। हॉकी झारखंड ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए की बैठक संपन्न। सीईओ ने कहा, एसआईआर में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम लगातार जारी है। इसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। उन्हें SIR प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने बताया कि
2: झारखंड में जो है हम लोगों का SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव प्रोविजन 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक हमारे सारे BLO जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता है वो उसमें हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन हूँ कि अपना अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के BLO के माध्यम से उसमें वापस लौटा
1: दे। इधर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने SIR कार्यक्रम के तहत BLO के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र भरने तथा SIR की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: लोहरदगा के तमाम जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मतदाता गहन परीक्षण एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना नाम जरूर से अंकित कराएं, क्योंकि ये आपकी पहचान के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें इसकी आवश्यकता है। तो आप इनका सहयोग कर आपके BLO आपके घर तक जाएंगे और अगर कोई कमी हो तो निश्चित उनसे संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों को इस पे इनरोल कराने का आप लोग सारे लोग प्रयास करें।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला के किस्को एवं पेशरार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी जनजातीय व्यक्ति के साथ उत्पीड़न भेदभाव या सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। लोहरदगा जिला में जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में 17 जुलाई से नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर जिला फुटबॉल संघ के अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि फुटबॉल लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को नशा से मुक्ति और रक्तदान के लिए जागरूक किया जाएगा। लोहरदगा जिला के ओयना टोंगरी में मिले 100 की गुत्थी मात्र चंद घंटे में ही पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 100 के अन्य हिस्से एवं हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: जो मृतक है उसके 2 मित्र थे जिनका नाम अरमान और सहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को सहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने पिया खाया और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया जिसमें कुछ हाथापाई हुई जिससे मृतक के सर में चोट आया। उस बॉडी को अपने सहबाज के घर के आंगन में रख के पीसेज में करके 2 पार्ट में फेंका गया। उन्होंने अपने घटना में शामिल होने का स्वीकार किया है।
1: लोहरदगा जिला में वर्षा शुरू होते ही किसान खेती के काम में लग गए हैं। कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर बीजों का भी वितरण किया जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष बेहतर पैदावार होगी। लोहरदगा जिला में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग और हम पेश कर रहे थे मुकेश की आवाज़ में फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक वार्ता। विषय है गहराता जल संकट। वार्ताकार हैं राज आलोक सिन्हा।
1: जल संकट आज पूरी दुनिया भर में विशेषकर भारत में एक गंभीर समस्या बन गई है। जहां 60 करोड़ से अधिक लोग स्वच्छ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, तेजी से होता शहरीकरण, भूजल

का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में अनिश्चितता इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4% भाग ही उपलब्ध है। वस्तुतः जल संकट एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय है, जिसका भारत जैसे जल समृद्ध देश पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां उपलब्ध जल संसाधन बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारत जैसे देश में इस संकट के दूरगामी परिणाम है। भारत में जल संकट के कई कारण हैं। तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल निकायों में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। इसके अलावा कृषि पद्धतियों में अक्षमता और भूजल के अत्यधिक दोहन से महत्वपूर्ण जल स्रोत समाप्त हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन से स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जिससे वर्षा का पैटर्न अनियमित हो जाता है और नदियों का जल भंडारों के पुनर्भरण पर असर पड़ता है। खराब जल प्रबंधन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी भी इस संकट को और भी गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम एक नज़र डालते हैं जल संकट के विनाशकारी परिणामों पर। जल संकट के विनाशकारी परिणाम होते हैं विशेष रूप से भारत में। जल की उपलब्धता में कमी से कृषि यानी खेतीबाड़ी प्रभावित होती है, जो हमारे देश भारतवर्ष की रीढ़ है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की पैदावार कम होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। समुदायों को अपर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई से जूझना पड़ता है, जिससे जल जनित रोग फैलते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच जल संसाधनों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक ताना बाना इन समस्याओं के कारण बुरी तरह प्रभावित होता है। जल संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिए हमें सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना होगा, जल उपचार और बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा और समान जन वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी होगी। इस प्रयास में सरकार उद्योगों और समुदायों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संकट का सामना करने के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, जल पुनर्चक्रण, भूजल प्रबंधन और जन जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। घरेलू स्तर पर नलों को बंद रखना और रिसाव को ठीक करना, जबकि सामुदायिक स्तर पर तालाबों का पुनरुद्धार और वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। यह जल संकट के अस्थायी समाधान हैं। आज हमारे समक्ष जो जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हमारे लिए यह आज एक समय ऐसा आ गया है जब हम सभी को अपने मन में इस बात के लिए गांठ बांध लेना होगा कि जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल है तो जीवन है। हमारी पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा जल से भरा हुआ है, उसमें पीने और उपयोग करने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में जल के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को अपने दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम सुबह होते ही ब्रश करते हैं, उसमें जल की आवश्यकता होती है। स्नान करते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता, मतलब जल के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जहाँ जल का उपयोग हम दुरुपयोग करते हैं। जल का हमें उपयोग करना है, जल को बचाना है, तभी हम कल को बचा सकेंगे, कल को सुरक्षित रख सकेंगे। कल यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको, और हमारे लिए भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि बड़े शहरों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जल की समस्या इतनी गंभीर है, वहाँ हर आदमी जो नदी के किनारे जाके स्नान नहीं कर सकता है, तालाब

उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके समक्ष कभी कभी नलों में पानी नहीं आने के कारण, पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मतलब ब्रश करने की समस्या आती है, उनको अपना सेविंग करके भी ऑफिस नहीं जाने की समस्या आती है। तो ये इस चीज़ को हमें गंभीरता से समझना होगा कि आखिर अचानक से मौसम बदलने के कारण खासकर गर्मियों में मतलब पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत क्यों होती है। कई शहरों में ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ की जल की कमी नहीं होती थी, वहाँ का भी भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है, हर आदमी अपने घर में पानी को किसी भी तरह से प्राप्त करने के लिए कई तरह के मतलब उपाय करते हैं लोग कि उनके घर में पानी आए, उसके लिए बोरिंग करवाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बोरिंग करवाना और जल का संचय नहीं करना हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी करता है। इस बात को हम सभी को समझना होगा, जन जागरूकता फैलानी होगी, और यह नहीं समझना हो कि हमारे घर में अगर पानी भरा हुआ है तो हम उसको यूं ही ऐसे खर्च करें। उसका एक एक बूंद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम समझते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हमारे शरीर में खून का होना जरूरी है, उसके एक एक बूंद का महत्व हम समझते हैं, उसी तरह से हम सभी को जल का भी महत्व समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएँ हमारी नदियाँ और जल संसाधनों के किनारे ही विकसित हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जल है तो कल है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। इसे सिर्फ हम एक कहावत नहीं समझें बल्कि हमको यह समझना हो कि यह हमारे जीवन का, जीवन जीने का हमारा प्रमुख मंत्र है। यह हमें जल के महत्व और संरक्षण की अनिवार्यता का बोध कराती है। अगर आज हम जल को बचाएंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए सब लोगों को, हम लोगों को समझना होगा कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और एक एक बूंद पानी को बचाना और उसे सुरक्षित, भविष्य के लिए सुरक्षित करना यह ज़रूरी है, तभी हम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता, कार्यक्रम था खुला आकाश। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहाद रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू

0: बढ़ाने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची

0: और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document, reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines.

0: नए हुरमुस के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नजर रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: भारत ने आज आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेसाल, बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तजारती मुआहिदे को ये कहते हुए भारत के तजारती सफर में एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकतदारी कायम करेगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत, लचकदार और मुसाबकती मईशत बनने के सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर तैयार किया गया है जिसके फवायद पूरे मुआशरे को हासिल होंगे। CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर खत्म होने से फायदा होगा। डिब्बा बंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और फुटवेयर अशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कान पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवे की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया, जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णव ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई एश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। बेंच ने रियासत को हुक्म दिया है कि वो मजकूरा आराजी से मुतसिल एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता। बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उनवान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाबता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट ऐलामिये को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस ऐलामिये का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनतकशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवीयत देना है। इसके अलावा ऐलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे

और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में बीजेपी का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताजियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आजाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफेन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसीतर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और 1 स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना वेस्टिल डे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन और उसके बैनुल अक्वामी साझेदार अगले 1 साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। यह मैच जीतकर फ्रांस लगातार 3री मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एकरोजा बैनुल अक्वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन जबकि लियाम डोसन ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजीद तकवीयत मिलेगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरी नाहल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले 1 रोजा बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नयन में संगीत दिया। बावरे नयन के निर्माता थे गायक मुकेश।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं चुनिंदा फिल्मी नगमे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए।

0: चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the Ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities allegedly owned and controlled by him. In cricket, chasing a target of 259 runs set by England, India were 239 for 4 in 42 overs in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, electing to bat first, England were all out for 258 runs in 47.5 overs. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. समाप्त होती है हमारी आज की सभा. प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. जय हिंद.